sam chela cheli upalla samaj sujanata yala sanjala hunti dinjan tatho ujyalo manamutu dilama deepasatmar gaunti pakan दीपक बन्छन् गुरुजन मसीहा ठहरछन् शिष्यलाई खोल्छन् मैला अँधेरा रहदा मनका पाठपाला बनाए आनी बानी सुबानी सुगति सरलता

एतम् बनाना विकट जहरिला राष्ट्रकर्मी बनाए भोकाए लेख्नलाई बचपन शिशुका।

विद्वत् द्रष्टारस्रष्टा अभिनव भवमः मान सम्मान पामुन् विद्वत् द्रष्टारस्रष्टा अभिनव भवमः मान सम्मान पामुन् सुखादर्श उर्जा गुरुजन विदुषी।

0: मा ग्रहत सर भाग्य विषय में जानकारी लिख चाहूँ फोन कर तब यदि मसंग प्रत्यक्ष रूप में भेटना चाहूँ भेटे कुराका चाहूँ फेस टू फेस भेटे कुराका परिवार सबजा को एक पटक में हिराशु मैं प्रत्यक्ष रूप में भेटना भी सकूँ। हम ज्योतिष कार्यालय का ठेगाना हो भरतपुर 8 गौरीगंज हेलपोस्टक अगाड़ी आर तब हमें भेटना सकूँ। भूत वर्तमान अनि भविष्य के विषय में ग्रह अनि भाग्य के विषय में विशेष रूप में जानकारी भी मैं कराने कोई मित्र आउनु भएको छ कार्यक्रम में स्वागत करूं कामड़ो को बोलते हुए नमस्ते हजुर कामड़ो को बोलते वहां को फोन काटियो हाई 98451 75223 98056 75223 नंबर में तब कोशिश करते अभी कोई मित्र आई सकू वहां स्वागत करो को बोलते हुए नमस्ते कामड़ो को बोलते
1: घोराई
0: तीन बामदेव कुमार जी बोलते हुए दांग जिला हाई
1: हजार
0: कस को विषय में हेन चाहू दांग
1: श्रीमती के विषय में
0: मैडम को विषय में जन्ममिति भन्न कति हो वहां को
1: 2056 साल
0: 2056
1: साउन को 29
0: साउन महीना को 29 गते हो
1: हजुर
0: जन्म समय भन्नुस् त
1: समय 4:30 देखि 5 बजे
0: 4:30 देखि 5 बजे बेलुका के बिहान
1: बेलुका
0: को 4:30 बजे बार के बार पढ़ दो था
1: शनिवार
0: ठैक्क मिले सुन हाई त 2056 साल श्रावण शुक्ल पक्ष को चौथी तिथि में जन्म शनिवार को दिन राशि कन्या राशि नाम आउँछ पवित्र हाई नाम आउँछ पवित्र भन्ने नाम आउँछ नानी को जन्म जिला रोल्पा जिला हो ठीक सुन ध्यान दिए 7 दिन नरगण पड़े नानी को घातक में नानी को पड़े तिथि चाहिए विशेषगरी पंचमी दशमी पूर्णिमा घातक शनिवार घातक नंबर में 12 नंबर राशि में मकर भन्ने राशि घातक कुंडली तो नानी को राम्रो खास नराम्रो ठीक अलग सूर्य ग्रहण दोष शनि निजो भर बसेको संतान में आएर अलग बाधा आने प्रेम विवाह होने ग्रह पड़े हो नानी को यहां बट हे कुंडली तस्त नराम कुंडली छैन राम्रै देखिन्छ यहाँ बट हे यो आइतबार को दिन नुन हेर्न नखाने चोखरी तो गर्नु चाहिँ पर्छ है नानी ने यह गरी नानी में धेरै कुरा में राम्रो र सहज भइहाल्छ समस्या आउँदैन अहिले ग्रह चलिराखेको छ वहां को भद्रिका अर्को राहु भन्ने ग्रह चलेको छ साउन भदौ असोज कार्तिक मंसिर मंसिर महीना पछि राहु सके बृहस्पति लाग्छ त्यसपछि अलिकति ग्रहहरू सुधार हुन्छन् राम्रो हुन्छ अहिले विदेश तिर जाने हो भने एकदम सजिलोसँग जान सकिन्छ एप्लाई गर्दाखेरि भिसा लाग्न सक्ने सम्भावना पनि धेरै नजिक र सरल हुन्छ शनिबारको दिन पिपलबाट जल चढाउनु पर्छ आइतबारको दिन नुन नखाने राम्रो हुन्छ शनिबारको दिन तेल नखाने तोरीको तेलहरू नखाने है नानीहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ समस्या आउँदैन है।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा